सतगुरु होए दयाल दसरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कभू झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख ने दिते हुए सारे रंगों नूं माणदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान प्रभ संधु दे नाल।

0: डोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115 416-213-1165।
1: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6840।
4: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
6: याद रखो मोना मेंगी From Insurance for You
5: 416-509-1509
6: or visit insuranceforyou.ca।
7: ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲ 905-678-1200 ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 2883 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 4550 Ebenezer Road, Brampton।
8: Stargate Logistics, North America, the one of the fastest.

0: ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: प्रोग्राम पंजाबी लहरा नवी सिद्धू दे नाल अपनी बिजनेस दी एडवरटाइजमेंट दे लई या होर कोई भी जानकारी लैण दे लई कॉल करो 6475041557 6475041557

0: भी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स इन कैनेडी 9054512600।
1: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी। ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हां ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए। सर्विस भी टॉप नॉच सी। टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी। करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी ता हुण हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
2: F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 416-302-4146-302-9941।
3: ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? 11:30 ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੇ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ?
4: ਮੈਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
3: ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਕਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ?
4: ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬੜੋ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਸੇਵਿੰਗ 100 ਡਾਲਰ ਦੀ। 905-458-1331 ਸਟੇਪਲ ਬੁਸ਼ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਤੇ ਸਟੇਪਲ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ 905-458-1300। ਛੋਟਾ
5: पापा, सुनते क्यों नहीं? चॉकलेट लेनी है।
6: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
7: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
8: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
9: माय फेवरेट, मेरी पहली पसंद।
10: आई लव इट।
11: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती।
9: हम सबकी पसंद
12: रेडियो आवाज।
9: एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 एंड सैटरडे 10 to 1 ऑन AM 530। नॉन स्टॉप कॉल्स, नॉन स्टॉप टॉक्स। Promote your business with us. Contact 416-518-3200.

0: मुझे शुरू तो कीती जाती है कि फादर फिक्रां विच लग्गिया चाहे अज भी है कल भी है। मैं कहने लगा कि बच्चा जो माँ के पेट च आ गया हों तो वह दुनिया जन्म लैन वाला हों तो पिता के दिमाग के जन्म ले लिया प्यो हों कि मैं अगर अच्छा भविख कि बनूगा। सो अच्छे भविख के लिए हमेशा अच्छी व्योंतबंदियां ही काम होती है। फिलहाल मेरी बात जो सुन रहे हो इस समय पीएसएनएल का ट्रैक 6 जिथे वेस्ट चेक उड़ान भर के उतर चुकी है तो थकान दूर करने लिए लोगों बाहर कड़ो। वेलकम टू कैनेडा जो लोग नवे उतर रहे हैं पीएसएनएल तो सुनते हुए सन जा रहे हैं इस समय टैली तो सारे ही 400 सीरीज हाईवेज तकरीबन 400-500 किलोमीटर के एरिए सन सुन रहे हो। हर रोज़ मैंने एक कॉल थोड़ा आता है बिजनेस के प्रमोशन से वास्ते। बिजनेस प्रमोशन लिए मैं हमेशा कहना हूँ कि छज तो बोले छाननी क्यों, यानी कि असी तो बोलीए पर नाल साडे एडवरटाइजर भी बोलो। ज्योति आपके पास कितने लोग रेडियो सुन के पहुंचे अभी तक? काफी पहुंचे हैं, थोड़े से पहुंचे हैं, बिल्कुल नहीं पहुंचे? ज्योति जी।
1: हेलो। हाँ जी, ज्योति फ्रॉम ग्रीन वैली गार्डन सेंटर।
0: क्वेश्चन था कि आपके पास कितने लोग आ रहे हैं सुन के रेडियो?
1: अभी अभी फिलहाल तो बहुत बिजी है मॉर्निंग में सारे सारे लाइक वेजिटेबल्स।
0: जब तक हम ऐड कर रहे हैं कितने लोग पहुंच रहे हैं सुन के आपके पास?
1: ओ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। वी हैड वेरी वेरी बिजी वीक्स फ्रॉम लास्ट 3-4 वीक्स। इट्स कॉन्स्टेंटली बिजी है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कोई बेलविल से आ रहा है तो कोई ब्रैडफोर्ड से, लंदन ऑन्टेरियो से, हर जगह से लोग आ रहे हैं।
0: तो मैं एक बेनती करूंगा आज फिर आ वीकेंड बहुत सोहना वेदर है, बहुत सोहना। कल से लगातार तो आवाज देते रहना, लाइव चल रहा है। नंबर वन के उत्ते बूटियां की क्वालिटी ग्रीन वैली गार्डन सेंटर है, तुहानू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की याद करा दूंगा। जब तुम उत्ते जाते ना फुलों के मेले लगते सी, बूटियां के मेले लगते सी, पौधों के मेले लगते सी। नंबर टू इन्हां दी पनीरी स्पैशल स्पैशल नाइग्रा दा लेते 14 एकड़ के ग्रीन हाउस के तैयार हुई है ते उन्हों कंसल्ट किया गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाल, यानी कि जिहड़े सब्जियां होणगीआं तुहाडीआं उन्हां ते पेस्ट जमा ही इंडिया वाले आणगे। तीसरा फुल, चौथे दरख्त, फलां वाले दरख्त घरे लाउणे ने, फुल अपने आप बार बार निकलने वाले जां सारा साल चलने वाले जां कदे भी ना झड़न वाले जां बार बार झड़ के नवें फुल लैके आउण वाले, यानी कि इन्हां फुलां की जानकारी नहीं हुंदी किन्नी किन्नी दूर किहड़ा बूटा लगाउणा, किन्ना रिओ पाउणा। धरती पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, धरती प्यार करने वाली जी रूह आ ग्रीन वैली गार्डन सेंटर से ना पहुंचे। मैं कहना कितने, मैं इन्होंने बूटे गिफ्ट किए ने, मेरा दोस्त अमन वो मम्मी डैडी बहुत शौक है बूटिया का। ज्योति मैंने 2 ट्रे उनको गिफ्ट की थी, बड़ी ट्रे। हाँ जी,
1: क्या बात है,
0: वो बहुत खुश रहते हैं, कहना सारा दिन फिर गार्डन हाउस के पिछे ही रहते हैं। सो ज्योति एक बार जरूर वाहवाही पड़ी है, बड़ी मेहनत की पूरी टीम ने। मैं धन्यवाद करता गुरदेव भाई जी उन्होंने जिन्हें करके मैं ज्योति तक पहुंचा है। बहुत हम्बल काइंड परसन गुरदेव भाई जी, मैं नहीं अजा कोई इंसान देखा जी जिसे को इन्ना कुछ हो इन्ना डाउन टू अर्थ होकर चले। सो जिते ग्रीन वैली ग्रुप में रन करते हैं उत्थे नाल नाल होर बिजनेस भी चले। गुरदेव जी ने बहुत बहुत प्यार, ज्योति उन्होंने बहुत बहुत प्यार। ज्योति बहुत अच्छे तरीके ज्ञान समझती है, इतने तुम्हें दस दी है कि बूटा कितने कितने किमें किमें लगाना है, किन्नी देर बाद पानी देना है, किन्ने देर से सब्जी आ जाऊगी, जे दूर लावा किन्नी वधूगी, नेड़े लाऊंगी किन्नी घटूगी। ज्योति जी आपका नंबर देने लगा हूं 647, आपके पास इतना है ये ज्योति? 647-222, मेरे को लगता है आवाज कट रही है, तो 647-222-5601,
2: 647-222-5601। 647 में माफी चाहूंगा, शायद तो अनुभी आवाज घट आई है मेरी, है ना? टेक बादल जी, यही कहना सी तुसी? हेलो,
3: हां जी अमन जी, सत श्री अकाल जी।
2: सत श्री अकाल, तुसी की कहना सी?
3: माइक बंद होया जी ਤੁਹਾਡਾ।
2: ओ बल्ले, इनू कहंदे टेक्नीशियन।
3: हां जी हां जी, ते ओना ज्योति दी आवाज वधिया आंदी सी, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ
2: ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾ
3: ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। हां जी हां जी,
2: ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਠੀਕ
3: ਹੈ। हां जी, ਖੂਹ ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਵਧਿਆ ਵਧਿਆ।
2: ਆ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਮੈਨਾਂ ਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਬਣਾਓ ਆਪਕੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਾਣਾ ਪੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ, ਵਾਕਈ ਜਿੱਥੇ $2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 4-5 ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਵਰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ, 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਫੀਲਡ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਫੀਲਡ ਐਂਡ ਜੋ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਕਵੀਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਏ ਐਨ ਡਬਲਿਊ ਆ ਉਸ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ 11665 ਮਕਵੀਨ ਡਰਾਈਵ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਟਨ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਯੋਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੁੱਡ ਬ੍ਰਿਜ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਕਿਚਨ, ਵਾਟਲੂ, ਗੋਲਫ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ, ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ 1.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ 2547 ਐਂਬਲਟਨ ਰੋਡ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ ਟੱਪ ਕੇ ਐਂਬਲਟਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਬਲਟਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਐਂਬਲਟਨ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨੌਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਆ ਸਟੀਲ, ਅਤੇ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਟੀਲ ਟੱਪ ਕੇ ਕੁਈਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੁਈਨ ਦੀ ਐਂਬਲਟਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ 'ਤੇ, ਦੇਖਿਓ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ 6472206206

0: Visa Medical Insurance. Number hai ga ji 416-817-6500. This is Harpreet Saini, Charter Life Underwriter and Certified Health Insurance Specialist from Top Trace Insurance Agency.
1: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स, पेस्ट्रीज, मठियाइयां, समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचन वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो।
2: कारां, एसयूवी, ट्रक, पिकअप ट्रक, घरां दे सोफे, कारपेट, कुर्सियां, शैंपू कराउण वास्ते अनमोल सिंह जी पक्के कनेडा वालियां नूं फोन करो 416-475-6600। $100 दे विच तुहाडी कार शैंपू कर दित्ती जावेगी। 416-475-6600। शैंपू तों बाद तुहाडियां कारां लिश लिश कर उठणगियां। 416-475-6600।
3: आप पंजाब

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca.
4: Pataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, si pal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Pataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of Perth.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा, दाल, चावल, नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड। 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
8: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
9: विमला विलेज ला विलेज पढ़दी पीओ च जंट पढ़दा विमला विलेज ला विलेज विमला विलेज ला विलेज पढ़दी। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप कैसे निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015
1: टीम से तो लेके आए ने कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील रोड ते एक नमी मास्टर प्लान कम्युनिटी जेदे विच 2500 तो भी ज्यादा नमे टाउन हाउसेस सेमी डिटैच ते डिटैच घर तैयार होंगे 2027 एंड 2028 दे विच ट्रेडिशनल टू स्टोरी फ्री होल टाउन हाउसेस बड्डी बैकयार्ड ते अनफिनिश बेसमेंट नाल सिर्फ 7 लाख डॉलर दी रेंज दे विच इन द 700s बहुत जल्द आ रहे ने सेमी डिटैच घर 8 लाख दी रेंज दे विच इन द 800s रिलीजिंग वेरी सून सब तो खास डबल कार गराज वाले बड्डे डिटैच घर सिर्फ 9 लाख डॉलर दी रेंज दे विच इन द 900s रिलीजिंग वेरी सून पब्लिक रिलीज तो पहला बेस्ट लॉट एंड लॉट कॉर्नर लॉट दे लई जल्द तो जल्द संपर्क करो एट 416-302-0016 416-302-0016 416-302-0016 शहर दे विच जगोर रोड एंड मेफील रोड ते 2500 तो भी ज्यादा घर तैयार हो रहे ने 2027 एंड 2028 दे विच कॉल टीम सिद्धू 416-302-0016 416-302-0016 टीम सिद्धू
2: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
3: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444
2: 905-564-6444
3: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो
4: चलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका पहला तुसी सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 to 6 लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी यानी कि देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसी दुपहरे सिरड़े 1 to 4 शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551 देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो सब डे जबीक तहाडे अंग संग चलो AM 530 दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नू क्लिक करो ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: 4573381 416-453-8381
1: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है जिथे एडवाइजर्स ले बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है
0: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे ले पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है
1: हां इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विच हो आज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381 ते
2: हाय रब्बा हुण की बनूं
3: जे तुसी कार इंजरी च इन्वॉल्व हो गए हो या सट लगी है गलती तुहाडी या किसी होर दी ता याद रखो इको नाम बरा टेंबर पर्सनल इंजरी लॉयर
4: इना कोल है पांच तड़लेदार कैनेडियन जंपा लॉयर्स दी टीम
3: जो दवांदे ने वध तो वध लीगल सेटलमेंट नो अपफ्रंट फी इना दी टीम कोल तक मिलियंस डॉलर तक की सेटलमेंट करा चुकी है ते पैसे सेटलमेंट तो बाद ही चार्ज करदे ने आज ही कॉल करो रूपा बराड़वरा नु 416-991-4946-991-5939 बराड़

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: टीम सिद्धू लेके आए ने कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड नेचर रोड टीम
2: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नाल जुड़े हुए हो इमीग्रेशन का कोई भी मसला हैगा तो एम्स इमीग्रेशन का संपर्क करो अमन बाजवा होर 16 साल का इन्हें तजर्बा है एम्स इमीग्रेशन का नंबर है 905-673-9000 यानी 905-673-9000 टेलीफोन नंबर है
3: जी ते नाले तुसी मल्ली टेंट सर्विसेज नूं जरूर याद रखो जे तुसी अपने घरां दे विच कोई भी फंक्शन कर रहे हो टेंट दी लोड है ये तुहाडे लई सारे वाटरप्रूफ टेंट्स लैके आउंदे ने क्लीयर टेंट लैणा होवे चाहे वाइट टेंट लैणा आ 10x10 फीट तो लैके 40x160 दे सारे साइज दे वड्डे वड्डे टेंट्स इन्हां दे कोल अवेलेबल ने तुसी इन्हां दे कोलों डांस फ्लोर टेंट फ्लोर स्टेज LED बार्स शैंडलियर नाइल लाइनर विद ड्रिपिंग कह लो कि डेकोरेशन दा सारा समान इन्हां दे कोल हैगा आ ते कारपेट्स बहुत सोहणे सोहणे लगाउंदे ने टेंट दे विच विच अकॉर्डिंगली हीटर्स ते फैन्स लगा देंदे ने ते लग्जरी पोर्टेबल ट्रेलर वॉशरूम्स लैके आउंदे ने दो सैपरेट यूनिट मैन एंड वेमेन दे लई ते जेकर तुसी इंडिया वांगू लंबे लंबे लड़ियां लगवा के अपने घरां दी पूरी प्रॉपर लाइटनिंग करवाउणा चाहुंदे हो तां मल्ली टेंट सर्विसेज दे नाल गल्लबात करो नंबर है 6479992569 6479992569 मल्ली टेंट सर्विसेज दा नंबर है
2: रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम के लिए फिर आप अगले गीत संगीत वाल ते जुड़े रहो साढ़े नाल ठीक शाम के 6 बजे तक